प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर आपको नमस्कार है, हे प्रभाकर आपको प्रणाम है।

यानी दोपहरिया के पुष्प समान रक्तवर्ण और हार तथा कुंडलों से विभूषित हैं, उन एक चक्रधारी सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ।

उन सूर्य देव को जो जगत के नायक हैं, ज्ञान विज्ञान तथा मोक्ष को भी देते हैं, साथ ही जो बड़े बड़े पापों को भी हर लेते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।

महादेव। ये केम छो बदा? एक बार सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे महादेव महादेव, दो बार महादेव महादेव बोलना है। वन

आज यहाँ आदि योगी के आगे महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सदगुरु के सामने, आप सब भाविक भक्तों के सामने, लाखों लोगों के सामने आज मुझे यहाँ वाणी पवित्र करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं सदगुरु और ईशा फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा मौका सिर्फ सद्भागी लोगों को मिलता है, तो इस हर एक क्षण को मैं जी लेना चाहता हूँ और एंजॉय करना चाहता हूँ। और आप सबको भी मैं कहूँगा कि अब मैं गुजरात के थोड़े लोकगीत गाने जा रहा हूँ, थोड़े गरबा के ताल पे गाने जा रहा हूँ, तो आप सब

0: चाय चाय चाय खाली करत रहे छी। भरि गाम घुमि अबै छी, अंगना में आबि के चाय चाय करय लगै छी।
1: पहले तो हम गुलाब लागे छलौं, अब खराब भ गेलौं।
0: हाँ।

कुछ समय पहले मुझे पहली बार मौका मिला बक्सर जाने का। मंत्री जी ने बुलाया था और मैं बहुत उत्सुक थी, क्योंकि जब पढ़ा मैंने कि बक्सर में भगवान राम का वो पहला कांड था,

0: दीपक।
1: हाँ भैया,
0: गृह मंत्रालय जी बड़ी रे।
1: गृह मंत्रालय मतलब
0: तोहर भौजी। दीपक एगो काम कर भाई।
1: बोला
0: बाबूजी लगे जो।
1: नहीं भैया
0: जाई बा।
1: नहीं
0: चल चल। हां
2: हमार हाथ छोड़ा, ये हमार सहेली के घर बा।
0: तो हम तोहरा सहेली खतियाल बनी और तोहरा अलावा हम यहाँ केहू के पहचानत नहीं खी और ना ही जानत आनी। लाई गिफ्ट अपना सहेली तक पहुँचा दा।
3: पहुँचा देबू ना। लो
2: पागल
0: आसिक
2: बदतमीज।
0: सुना जब बदतमीजी के सर्टिफिकेट दिए दे हलू तो लागत आई सर के किस गाल पले के आही के
2: चैलेंज।
0: का हो भाई

0: अरे आइली हम पूर्वा के वारा से अरे माला किने केने बड़ू हा
1: तनी कस के घर आउ रे
0: आई

0: अरे कौन हो ना सकार है
1: अरे कहन रे
0: नहीं गोहरा गोहरा हो एको मेहरा रुबिया गोहरा
1: अरे सतीश बभौ जी
2: ए का चिल्लात रहो का गोदत रहो
0: अरे भौजाई गोदना गोदतानी
2: अच्छा अच्छा गोदना गोदत रहो
0: हां कई प्रकार का गोदीला
2: हां ना जैसन जैसन कहल जला वैसन वैसन बनावे
0: एकदम ना गोदी दे
2: कैसे मानी
0: सुना हमार बात
2: अच्छा

0: ए माला की
1: बोला
0: अपने हाथ पर दिल बनवा ला बिल को अंगूठी।
1: अच्छा ठीक आब
0: चल गोदी दे रे।
2: अया यो ढाड़ कमर दुखे रही म त हैरान भइसके भने।
3: यति सानो समस्यामा पनि चिन्ता लिएर बस्नुपर्छ त भने ल यो सन्देश सुन्नुहोस् त।
4: कोरियन प्रशिक्षकबाट प्रत्यक्ष रूपमा तालिम प्राप्त विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर उपचार सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ थेरापिस्ट सुशील अर्यालबाट उपचार गराई ढुक्क हुनुहोस्।
3: आयुर्वेदिक मसाज, कोरियन मसाज तथा अकुप्रेसर विधिद्वारा कम्मर तथा मेरुदण्डको दुखाइ, थकान महसुस भइरहने लगायतका समस्याको सफल उपचार।
4: उपचारका लागि सम्पर्क वरिष्ठ थेरापिस्ट दृष्टिविहीन सुशील अर्याल, ओजस आयुर्वेदिक हस्पिटल, सामाखुशी चोकबाट रानीबारी जाँदा 10 घर पर। फोन 01-4963-161, 98-49-39-1232, 98-49-39-1232।

0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ
1: सुमिरन एफएम
0: 100.9 मेगाहर्ट्ज।
2: शिमारु के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
3: हम फैक्ट्री के लिए आए हैं, ना गांव की भलाई के लिए और ना ही किसी और मकसद से। आज राधा आपसे अपने दिल की बात कहने आई है। शगुन स्वीकार कर लीजिए।

0: स्वस्थ जीवनको आधार वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ आयुर्वेदिक उपचार महाकाल आयुर्वेद उपचार केन्द्र बालाजु बाइपास। के तपाईँलाई दिसा गर्दा दुख्छ, पोल्छ, रगत जान्छ वा मासु पलाएको छ?
1: यदि यसो भएको छ भने तपाईँलाई पाइल्स, फिस्टुला वा फिसर पनि भएको हुन सक्छ।
0: विगत 20 वर्षदेखि आयुर्वेद उपचार गर्दै आइरहेको महाकाल आयुर्वेद उपचार केन्द्रमा विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा बिना अपरेसन पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाको सफल उपचार भइरहेको छ। साथै ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, पत्थरी, जन्डिस तथा हेपाटाइटिस, पिनास, माइग्रेन, यौन दुर्बलता, नपुंसकता, छाला रोग, दाद, दुबी, डन्डीफोर, कपाल झर्ने, सुगर, बाथ, प्यारालाइसिस, मानसिक तथा अन्य दीर्घ रोगहरूको सफल उपचारका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। महाकाल आयुर्वेद उपचार केन्द्र बालाजु बाइपास, फोन नम्बर 01-4987-917, 98510-69555, 98510-69555।
2: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
3: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
4: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
3: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
4: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
3: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

मोहित भाई की फरमाइश पे मैं वो एक हक परस्ती का कलाम मैंने पढ़ा है चंद अशार में, वो पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर माइक अवेश अवेश शौकत अवेशी साहब को देता हूँ। क्या

शेर सुना रहा हूं और ये कह के सुना रहा हूं कि जिसकी मीडिया पे तस्दीक कर दी लोगों ने, जिसकी तस्दीक कर दी नहीं कर दी, सुना आप लोगों ने कि सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान का एक एक आदमी जिसने कहा कि नहीं मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। इसमें तो होनी चाहिए बहुत जोर की तालियां कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही आदमी कि जिसने कहा कि चंद सिक्कों के एवज मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। तो ये एक शेर आखिरी

मैं तो हैरान हूं यार, आज के टाइम पर भी इतने बुरे लोग होते हैं। डू दे इवन एग्जिस्ट?

0: हो गया है, ये सारे लोग किधर जा रहे हैं, बुरे लोगों की हो रही है उम्र लंबी, अच्छे लोग मर जा रहे हैं।
1: I would just say, अब अच्छे बुरे की समझ तो हमें हो गई है, लेकिन वो जो भी जैसा भी वो मेरा यार है और उसका दिल हमेशा मेरे पास है।

सुनोगे क्या कुछ, अभी अभी सोचा है। मैडम आप पे पूरा भरोसा है, चलो। अच्छा सुनो, जो लाइन पसंद आती है वो चुनो। चाकू नहीं, गन नहीं, डॉन खाली फोन पर। वाह

कहीं से पीड़ में, अब अक्सर मिलते नहीं है वो, मैं उनका जिनके नहीं है वो, कभी तैरे थे खुशी की लहरों में साथ में, डूबा अब तिनके नहीं है वो, चेहरा था एक वो गांव या शहर था ना है मालूम मुझे, घड़ी में टिकी थी नजरे क्या पहर था ना है मालूम मुझे, सुबह के सपने थे बैग में, शाम को बोझ के कैद में, माथे की सिकन शायद कहती थी ठहर जाना है मालूम मुझे, एक की दस की आई यू, बीस में रावण वो चेहरा जटाई यू, तीस में पहुंचा और देखा फिर आए ना, दिखा बस रेत सहरा की वायु, फिर आई उम्र पचास, चेहरे पे लिखा हताश, अभी भी जारी तलाश, आंखों में दिखा बस काश, मिलते थे चेहरे जो काफी वो दिखते हैं आज भी, पाक या पापी तक कौन मैं ढूंढू मैं सादगी, तस्वीर कोई खास सी अक्सर ही नजरों के सामी, बस धुंधली सी याद की, था वो कौन शायद ये याद नहीं, बस याद है ओढ़ी थी उसने भी धुन कोई साज की, ये देखो औरत का चेहरा, कोई घरेलू कोई झुझारू, कोई खुश है खेत की मेंढो पे, कोई कहे मैं समाज सुधारू, कोई न्यूड से व्यूज में फंसा चाहे, कोई कुरीत के कपड़े उतारू, कोई चैन से मरना चाहे, कोई कहे गड़े मुर्दे उखाड़ू, देखे है नादानी चेहरे, देखे है मनमानी चेहरे, देखे है इंसानी चेहरे, देखे है कई ज्ञानी चेहरे, अल्फाजों के चेहरे कुछ सीधे कुछ गहरे, तकाजों के चेहरे कुछ बहते कुछ ठहरे, आवाजों के चेहरों पे सियासी पहरे, रिवाजों के चेहरों पे सामाजिक भैरे, देखा भगवान का चेहरा, गीता का चेहरा, कुरान का चेहरा, आंखों पे पट्टी है चेहरों की, कोई सुबह का चेहरा कोई शाम का चेहरा, कोई तो नाम का चेहरा, किसी का साथी है किसमें मगन, किससे है प्यार और किससे जलन, क्या ऐसा है काम का चेहरा, मिलते थे चेहरे जो काफी वो दिखते हैं आज भी, पाक या पापी था कौन मैं ढूंढू बस सादगी।

वो पास है पर लकीरें आधी आधी लगती है, सूरत सोई और सीरत जागी जागी लगती है, उसके चेहरे को देखूं तो इनकार दिखता है, निगाहों में झांकूं तो राजी राजी लगती है, जो उसे देख लूं तो सांसें थम सी जाती है, जो ना देखूं तो धड़कन भागी भागी लगती है, छोरी झुमका पायल पैर नशीड़ी लागे है, छोरा बिन पिए मदहोश।

हरियाणा के छोटे से गांव का जिक्र, घर खड़ा कर खेत में लिया रास्ता गुजर, कुछ है यार कदी कराना जात का फिक्र, घर बार में नहीं कमी थी राम का शुक्र। कला की बात के कला के है ना बेरा था, कंचा गोली गिल्ली डंडा शाम कद सवेरा था, बापू की मार और माँ ने करा लाड़, चार दिना में ते एक गुजरा कोई ना बखेड़ा था। फिर पहुंचा HR 51 देखा एक था विज्ञापन, सपने बुनता गिनता मन छोरा तकता सिंहासन, खैर यहाँ से बदला सब बोल चाल रहन सहन, दोस्त यार बदले बदले घैन वैम। ये दूसरा दिन भी चल रहा था शांति में, ममता के पल्लू से निकला लाने को क्रांति, वे वॉज लिस्निंग फिल्म शेडी।

11 लिखावट की आहट में छिपा हुआ रहने लगा, पन्नों पे भर के कुछ भी घिसा पिटा कहने लगा, बैटल्स में चोक हुआ जोक बना वो, दिल्ली बने लंग्स रोज धुआ बोझ बना वो, और रत्ती भर भी कला पे ना दुनिया गौर करे, वाकिफ कला से जोनी दुनिया भर का शोर करे, तीसरा दिन डूबा लेके सबासार, शोर में

बाजार सस्ता और बिक रहा था वो। ना जाने किस घड़ी का इंतजार था, चेहरे आसपास कई थे पर एक यार था। शुक्रान मंच का जहां खड़ा है वो, शुरू हो चुका है सफर दिन ये चार का।